0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी सोहिनी राय चौधरी। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी। तो लीजिए प्रस्तुत है श्यामा संगीत। कलाकार हैं अजित गोस्वामी।
1: You were listening to Shyama Sangeet by our artist Sohini Roy Choudhury. Concluding the program, we now bring you Shyama Sangeet by our artist Ajit Goswami. Listen now to Shyama Sangeet. Our artist is Ajit Goswami.

0: अभी आप हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत श्यामा से सुन रहे थे। कलाकार थे अजित गोस्वामी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू आर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वाज अजित गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग चारुकेशी पर संतूर वादन कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय आपके साथ तबले पर हैं देवाशीष चौधरी तो लीजिए प्रस्तुत है राग चारुकेशी पर संतूर वादन कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen first to a Santoor recital in the rag Charukeshi. Our artist is Shubir Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Chowdhury. Listen now to the Santoor in the rag Charukeshi. Our artist, Shubir Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग चारुकेशी पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुबीर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष चौधरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है पंचम सवारी पर तबला वादन। कलाकार हैं सौमित्रो दास गुप्ता। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरणमय मित्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है पंचम सवारी पर तबला वादन। कलाकार हैं सौमित्रो दास गुप्ता।
1: यू वर लिसनिंग टू अ संतूर रिसाइटल इन द राग चारुकेशी। आवर आर्टिस्ट वॉज सुबीर मुखोपाध्याय। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वॉज देवाशीष चौधरी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Pancham Savari. Our artist is Sumitro Das Gupta. Accompanying our artist on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to the tabla in Pancham Savari. Our artist Sumitro Das Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप पंचम सवारी पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सौमित्रो दास गुप्ता। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरणमय मित्रा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन पंचम सवारी। आवर आर्टिस्ट वॉज सौमित्रो दास गुप्ता। Accompanying our artist on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं मिश्र वाद्य संगीत। प्रारंभ में सुनते हैं सितार वादन। कलाकार है विदुषी जया विश्वास। आपने सितार पर प्रस्तुत किया राग नटभैरव सुनते हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है रघुराज तुलसी बाग वाले। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग नटभैरव, कलाकार जया विश्वास।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी जया विश्वास द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग नट भैरव। आपके साथ तबले पर थे रघुराज तुलसी बाग वाले। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सरोद वादन। कलाकार है झरीन दारूवाला। आपने सरोद पर प्रस्तुत किया राग भटियार सुनते हैं। आपके साथ तबले पर है विभव नागेशकर।

अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन, कलाकार विदुषी झरीन दारूवाला। आपके साथ तबले पर थे विभव नागेशकर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम 24/7 हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Raag Bihag by Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by vilambit and drutgat set to teen tal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकंपनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफीउद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वॉज अकम्पनीड बाय रफीउद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है पंडित विद्याधर व्यास। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग छायानट। सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है एरी अब बूंद लाओ, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है रंगन पिचकारी डार। सात संगत हारमोनियम पांडुरंग शिवलकर, तबला विनायक पाठक और सारंगी लतीफ खान। तो आइए सुनते हैं पंडित विद्याधर व्यास द्वारा प्रस्तुत राग छायानट।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी

अभी आप सुन रहे पंडित विद्याधर व्यास द्वारा प्रस्तुत राग छायानट। आपके साथ हारमोनियम पर थे पांडुरंग शिवलकर, तबले पर थे विनायक फाटक और सारंगी पर लतीफ खान। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पंडित विद्याधर व्यास द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस। विलंबित तिलवाड़ा में निबद्ध रचना के बोल है कबहो कपी और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मुख मोर मोर मुसका तजात। और सुनते हैं तराना। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं ओंकार गुलवाड़ी और हारमोनियम पर है सुधीर नायक। तो ये सुनते हैं पंडित विद्याधर व्यास द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पंडित विद्याधर व्यास द्वारा प्रस्तुत राग मालकंस। आपके साथ तबले पर थे ओंकार गुलवाड़ी, हारमोनियम पर थे सुधीर नायक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya, Sri Arun Kumar.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिरिराज। ये है रागम डीटीएच पर हरदम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to Hindustani Sitar Recital by Pandit Giriraj. This is Ragam, 24/7 DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर दम हर समय डीटीएच रागम के लिए

ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द कंपनिंग आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन सारंगी.

शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बदवा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Braspati. First listen to Rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod.

0: आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। नाउ लिसन टू राग हिंडोल।

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वॉज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मालती पांडे ने गाई संत जनाबाई की इस भक्ति रचना से।

संत जनाबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं गदी माडगुळकर की देशभक्ति पर ये भजना, जिसके संगीतकार हैं मधुकर कोळवलकर।

समोह स्वर में अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना, जिसके गीतकार थे गर्दी माडगुळकर और संगीतकार थे मधुकर गोळवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में पीके क्षीरसागर की ये भक्ति रचना।

क्षीरसागर ने लिखी ये भक्ति रचना भी आपने सुनी संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उदय काळे के स्वर में संत चोखा मेळा की ये भक्ति रचना।

संत चोखा मीणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उदय काले के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत बहिणा बाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है उत्तरा खेड़कर ने।

उत्तरा केळकर ने गाई संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना भी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति पर गीत।

देशभक्ति पर गीत अभी आपने सुना लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं स्वामी स्वरूपानंद रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है शंकर घाणेकर।